0: 원쯤하고는 이 트와이트.
1: 땡겨라.
0: 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡겨라. 땡